योषा गणेन वरदध्नि विमथ्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्र घोषा रोषा कलिम् विदधते कगुभश्च कुम्भा शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मेशमित्र शतपत्र गतालिवर्गा हर्तुम् श्रियम् कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरी निनादमिव बिभ्रति तीव्रना

सिरे करा लेंगा, अड़त नोड़िए मोरे करा लेंगा, उसरा उसरा निनय करा लेंगे, उड़ने उड़ने मरक करा लेंगे।